0: खलंगनो रगई आसक गोबां सिमारि करै तै अबनो रकनो तिनि ने अ सालनो रगई पाला लेमेनि राशि चको चार बिसिनि तिनि ने हाय सालनो रासियानि साइबेरिया नि तुरस्का हनै कासा थाय दङ आ जागानो कासे कतर खलायै नखालंनि देरामुं एखबा ग्रहनि देरामुंखा आबो बेलायखे लाइबुङाव जतनि साय कतर होनै सिनिजाका तै देरामुंबो कतर ओङै देराखा रन्दि नै साय सारा बाजि बर्ग किल'मिटार अमहाय बलं कतर सोबाय सुक्रुब रेखा आजराव आबनो मैथ्य नारगैन दिनै नवा सालन जों मैथ्य खालायो तै नखालंनि सय सिमुंनो रगै बर' रंन सिसारिनानि बागैन निसाय सिदक बिसिनि दिनै निहाय साल इउ एन ए एखबा जातिसंग अ सालन पान्दानि बिसिंतै साख्लायजाका लुकरग्न सिजारिनानि बागै आबुनि नाहरमुनखा चिनि थिनांनि आजायसंन नखालंन रगै गोबांखे सिमारि फुनुंनानि एखबा सायमारिनानि बागैन अ सालन सायनो हालायखिया आव फारिगे जों दाबो खोनालायानो बुलियानो कक काहाम दिनै खोनालायानो स्वामी विवेकानन्द शिलांमानि कग्रक थाइजे थाइनै साक साक न बिग्रा होनै नरक तावान सकदि नरकनि लगि संकरै होनैब तावान सकदि साबो बर' नुखाबा रां बायसे बरक सोनामजागमानि बरक रक्से सालब्रुम न आजिवै रां न सोनामै दङ अ हा साखाव आसो खामग्रानि सामुरक तांजागमानि आबरक बेबाग न बर' रगनि फानबायसे ओङो मुसुंमा तै पैट्यनि बिसिंतैसे आमुनि फानबायसे आबरक बेबाग न ओंबाय गुबैनि बागै जत सामुं नन याकारै रैमान फियाबा मुंसासो सामुंनि बागै गुबैन याकारमा जाया गुबैन रुटुकमानि आबो कायसा फाननि मारि नुगजाबमासा गुबै बाय गोदालजाक कक रखनखे थाइजाफान गोमाय थांला मलब्रुम ब्रुम न आबरक खिबिजाक मानै हामिया हबजागै बर' रुंनि मकलनि फादारा तङैमान फियाबा आबरक उल सेगां सालसाया सालसा नुगजाबनाय नुगजाबनाय आसुक जरा खोनालाखे ककाहाम
1: फारिताबो खोनालायनो लाइथांनाय बिसोरखौ दिनै दैसालो तामो तामो पाति थांखा लाइबुमा किसा फिलिनालियानो 1855 ख्रीष्ट बिसि दिनै हाय सालन सिधु बाय कानु मुर्मुनि तैदुल मुंबाय सावताल रग ब्रिटिशनि नायकल मुं जमिनार रायदा दे महाजन रग सातक मानतै जबा खालायनो सिगांगौ अम भारत हाकतनि लाइबुमाव आदिबासी रगनि पुइला थानसाख्लाय जबा नांमानि होनै सिनि जागै दङ जों तुमुं हायुं कतरबोखाखौ नारायनायखायखाय नुगजागौ 1905 ख्रीष्ट बिसुआव दिनै हाय सालन आलबार्ट आइनस्टाइन बिनि बेलाय मुं गोनां कखाल नकारिय आरो विशेष आपेक्षिकतानि कक तत्त्व ब सेयो दिनै हाय सालन 1908 ख्रीष्ट बिसुआव जों खोनाखा साइबेरियानि आमजायो महाजागतिक बस्तु होनि आब सिनिजागौ नखायंनि मानै क्लाइमाबाय 2000 बर्ग किल'मिटारनि बो गोबां बलं वायसबैन खामप्रबाय सुक्रुब जाक्रिङै थांबायो लाइट अफ द लं नाइफ्स होनि साजागौ 1934 ख्रीष्ट बिसुआव हिटलार बिनि नाथि बदलन केबेंनाय

0: जत बरकनो बुथारे बिनि आसुक थाइनो बिनि नायकल मुंनो देबो खम खम खलायो 1937 ख्रिस्ट बिसि तिनि हाय सालानो लन्डनो हायुनि बिसिङो पुइला 999 फोननि परिसेबा जेंगिरियो अबनो हायुनि बिसिङो पुइला फोननि परिसेबा हिनै सिनि जागै दङ 1960 ख्रिस्ट बिसि तिनि हाय सालानो बेल्जियम नो बेल्जियम कंगुनो यक्षा हिनै यक्षामानि कक्साक्लायो आसिल जरा खनाबे खेलाय थांनो बिसिरगो तिनि दि सालो तामु तामु पाति थांका फारिताबो खनालायनो
1: आव फारिखे जों तबो खुबारो जिंगा ख्लाइमानो रगै कक्थासे थानि खनालायनो आव जिंगानो जों जतनो सायमानो छिबो छिनुबो बनो कायनानि हिंखेंके जों अमहाय तेलु थांनाय थायनायै हा काहाम किसा हा सिमुक गोनां साफलसा कमाय हानायनो गायखे सावो वायथाम वायब्रै आलसुलायै जगामलक सौयै जों हानो तियार खालायनो नांनाय तै पद्रिपद जिंगानि बिसिङो जाद्रग नुजागो आब्रगंखा पुसा नमदर पुसा सतपतिया यार लं आबनकारी तराई नजदर जयपुर लं सूर्य सका बर्षा की देसी जात रग नुकजागो आबन यागल हाइब्रिड रग नि बिसिङो नुकजागो सुरेखा रोहिणी एन आर जि एच नाइन आबहायरग पद्रिपद जात जिंगा दङ जिंगानो कायनानिखे जों एकरका स' बिसियापानो जिबानि सिमि नैसि मालखुं मुसुक बिखि एबा जाब्रा कसक रुयि रुना नांनाय आलबायना सोखां आलर गाहामखे बायमानिया गल' जों दायो बायसा पायथाक आल सुलायमा जारावो नैसि सेर इउरिया दाय नैसि सेर एस एस पि दाय नैसि सेर एम पि साफल रिमखांखे दायबो जाखगौ गायनानि राइजारा खुंखांखे जों फुट गायब्रै बाय फुट गायथाम केबें गुवार खायै अमाखे हाखर खुरै हारफोरावबोखे सोनामै रोना नांनाय कलथाम कल ब्रै बोसोलै खिख्लायै रोना नांनाय हाखर खरसाव आबुनि आगल' आसायमा यागल' जों गाहामखौ बोसा फांनायनि आरोगै तै गिसा हामताया अमहाय बोसारनोखे हुसै खिबिना नांनाय तै मिटार कासा कासा खालायै बेरेम खालायै गलान रुयै कायमांखे तायबो जागौ तामनि बागै हिमालय दैलक दैरक लथंनानि बागै तै जिंगानो जों जार खालायै गायना नांनाय जार हंखे तायसा बुथायरक बहायनो नायथं नायथंगो तै यंसा कुकसारक बासो मानहरिया आबुन बिसिंबा न पद्रिपद बेमारि रग नुजागो रन्दि एन्ट्रक्स नुसनि कायसे बेमार दङ आबो बलाय साक सावै उलखे आबलाय समजावै हयि थांगो बायथागो बुफांफानो थैमानो आबुन बागानखे जों लिटार कायसे तैयो 2.5 ml मेनकुजेब एखबा कार्बन डाइजिम न साफुलै रोखांखे स्प्रे खालायखेंखे हामानो आबै आगलते कैसे नुकजागो बेमारे रंग बिसिङो पाउडार मिउल उट नै आबंखे पुइला बुलायनि बिसिङो तै बिसिं साखाव कुफुर कुफुरखे गिदिं गिदिंखे दाग एखोबा मारि नुकजागो आबो भायनो अलखे बुफां थैना बखाक थांगो आबोन बागैखे जों सालफेक्स एखोबा सालटेक्स बिथिन स्प्रे खालायदेरना नांनाय तै कैसा नुजागो बुथाय थाइमैया गल' बुथाय गोलैयो जों यं फुगै अयं बुतैतै रोखांखे बुथाय र ककै मकै रङै थांगो अलखे आबुथाय सगै रगु थांगो आबुन बागैखे जों मेलानियन याखोबा साइथियन 50 इसि न रुवै आबु बिथिन 2 ml खालायै कैसा 1 लिटार साफलै

माइ बर्मा पाई माइनी खेत तुमुंग जाब्रा रगा से खेके आबरक जरा जरा फुई खिबिओ बिनी खेतन ब बेले साब खैतनी दैरानी थांगा हिंकाय नालानी खालानी तुई थेवई तुबुई बिनी खेत माइरक नैरिओ आम हाइख्लाय बिनी खेतन ब बेलाखे तलाफिख्लायो बिनी खेतन बेलाखे नाइकानी ख्लायो जायख्लायो तनिओ बोलो माइ रामा जरा हिंकाय आसके माइ थैका रावई कुलमालिया दे खरक्सा सामुं तांने हिंकाय जराव मुंसा ख्लाया आहायनो बुइ सामुं तांमा सिमि नाहारि दङ लक लक ख्लायै आमति ख्लायै माइराना जरा हिंके बिनिखे मुंसा करि खेत बुक्सा फियाबा आ सामुं तांनाय बरक हिंकाय बिनि मायाम सपुङै गुला सपुङै माइति साका चाविबो चाविबो जाबायलिया फालै रां गोबां खातिबे मानखान अमाहायके बिनि नखुं हामजारो रोगो फियाबाव सेलेर बरक निकाय बबिनि अबन्नुगै मकल मुसु मकल केलेंगो मारा किजिं ताखुबुखु बनि बागैन मा होनो मुसुयावै चायतक दि कायतर जोंनो जतन न याक याकुं रिखा फान रिखा बखरक रिखा बखा रिखा जों वानसुगि मानो तक्सा तक्ति रक बरक तांगैबो मानिया तैबो मानिया बरक से जानान बागि वानाया कायतर बरक न चारि उतनु अब बाइबलस सामानिकक कायतर जोंनो तो वानसुकनि फानदिखा चापनानि फानदिखा बखरग याक याकुं रिखा बेबाक रिखा जों जेसाफान ख्लायमानो अबनि बगिनो जों नुखा गारि मालखुं स्रामजाखा मालखुं कलक स्रामजाखा तैनि रुं कतर स्रामजाखा बिरखुं स्रामजाखा कम्पिउटार रेडिय' दिनै जों कक सायदोंमोन फन हाइरक टेलिफन हाइरक मबाइल हाइरक स्रामजाखा कायतर बरक नङा सुवारिखा फियाबा जे बर' गोस्रां जे बर' वान सुखनाय आसुवारनो थेपाखा बरक न हायुङ मोखां गोजों खरक गुजुखे हामसा जाख्लायै जोनावै नायथकै दं इमानखा फियाबा आबुनो मुसुयै दमुं दंखायखे जों देबसे हामियांनाय देबसे उग्लक्लायनाय जापान हाय हाकतर बरक बुसिकसे बां फियाबा बरक हायुंनि डेभलप कान्ट्रिनि बिसिङ बरक बो खुंसा कान्ट्रि बरक बुसिक गोस्रां बुनो नाहारिया बुनो मुसुया बनि बागै बरक हायुं गोनाङै बरक दाल बिदाल मानि फालु स्नाम स्नामै आमदिख्लायै बरक जाबाया नोंबाया फियाबा गोबांमा हाकतर दङ बुनो सिमि वान सेजाओ बुनो सिमि मुसु मासाया मानोङिया हाकतनि बर'रक बर'रक गाहामखै साग नायजागै मानिया साग नायजागनि गाहाम साग खाम नकरै थैबायो जेरैबो सारक सागदिरिया बुरैरक जाग्रारक सिख्ला सिख्लिरक जेसेबानो गाहाम ख्लायनो मोजांदि ख्लायमानिया बरं आरो मान्थ गैया माहाय जामुं बियालनि बागै गाहामखै तरसेमैया हामसेमैया बरकनि बम तम गियो गया पुस्टि मानियानि बागै गाहामखै साग दुख तरै लगि मानिया बनि बागै फायदेजों केबनो मुसुया ओइ मुंसासो ख्लायनायनि बागै गाहामनि बागै हामजानायनि बागै गियकनायनि बागै से जायतक्लायनाय मुसुया ओइ जायतक दिनि टपिक मार्केजिं ताखुबुखौ दिनै फन हामियानि बागै नरक जायतक्लाय दंफानो आनर सकबाया आं सावैमान दङ नरक जायतक्लाय दङ खोनावै दङ फियाबा नरक बाय

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं।
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है।
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: फोन का हम ते लामसुको नर खनाई तंगु सरसा पॉइंट दग मेगा हर्स FM उज्जैन दोनी दिनी कोक ब्लॉक आवे पंदा ते आंग फाइश को जाग नर ने बुखुगरी मा ओ जरावो तबुक से न स्टूडियो ने जरा खोगो तामोई तंगु फोन नी दाम चिशा तामोई शोती साते मुफली ब्रोची थाम का खाखा यो खनाई तंगु तखुक ते बुखुक शोंग नर ओ जरा आनो खनाई तंग ना हने ताम नी हिमालय नर जो तो न शाइमा न फोन ने एगा उठा ताम खेनो चीनी कोक ब्लॉक पंदा चेंगो है ता गे कोक ब्लॉक पंदा वो नो बगै दाल बेदाल पान्दा दक्सन तुबै फायो हायदा गाति नि द कुराक्साल

0: फायदे जों ताबो ककदुगो थांलायनायानो ककदुग बखागो सिनि ताखुक एबा फुकसं ब कक कक फिल एबा एक्वेशन नि कक फिल दुइ देवान नायनो जे पन कक सं मंगना राखाबनि हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो

नांगमानी कक सालना नांग सीना नांग फिया अ बेमानी बनी सै का समूह सै बिथिंगा तमंगे सीजामू एवानेस लुको सीजामू नीजाका नाइमान कांगे अबंतने किरेना मूसा करे पुलाना सूसाइमाना नांगनाय एच आई वि तच तम अकायने फिया आलादा से एच आई वि अब आलादा एच आलादा एच आई वि नि बनि फुल फर्म गांके ह्यूमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ह्यूमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस तम बनमो एस आई बी फुल फर्म मनफुल मूमे ह्यूमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अब कैसा वायरस बेमार अ बेमार सिनी बरफ नि सागो हाफाइके तुरुत तुरुत सिनी जे इम्यूनिटी सिस्टम सिनी जे रोग नो का सुनान जेको बेमानो का सुनान बाबिने सिन सागो अ सरी बिसिंग गोबांमा जेमन सिनी देश नो रक्षा खालायन बाबिने पुलिस आर्मी तंगमा हाय सिन सरी अब आब हाय इम्यूनिटी पावर दं गोबांमा बेमानो का सै दं बर फियाबा अ बेमार जखन तो अ एच आई वी जे फुरु सिनी सागो हाबाने अ वायरस आफुंगाके अ बेमार का सुनाय रंनो कमजोर खालेखिबो निन सखनो एकदम लिंग रेखीबो जेसपन बेमार फैगंक टीका सुनिया किसी से अंक कंग्रेन किसी से अंक लुंगना किसी से अंक बकर सना किसी अंक कपाना अब हायर अब बगे तम दरकार है सीनी इम्यूनिटी पावर मान सी जो शरीर रोग प्रतिरोध क्षमता अब कहम तना नाई अब नो जे कहम तना के एस आई वि हाफ हंके बनो काम खाखी अ इम्यूनिटी सिस्टम ध्वस खाखीब हामिया खाखीब तब एच तम एच हमको तम हमको एच ए आई डी एच अब उनके एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम अब उनके तम हमको और जे एस आई वि जे थ्रू नि सागो वायरस हाफाया न हाफाइक निर जे वायरस हाफाइक निजे इम्यूनिटी पावर कम खाखीमें कम खाखीबे आपको जे रोग गुनाए आब मतम एड्स अब एड्स अब जा एड्स बेमार जेफर एस आई बी बी वायरस छोड़ फैन आप चीनी जे इम्यूनिटी पावर कमी थाने आपके बेमार का सुना बाकी बेलैखे केबल चीन बसा आप चीन बसा किसा किसा कसा मा मा सा लोमना कपाना टीबी बेमार अब हाई कबा मैं बेमार दंग अब हाई बेमारों हमजागोता एड्स क्या जत बर जत कुलूम एड्स है सेमाका कखे एस आई वि बै कल अब जब बेमार निबागिने वायरस निबागिने एड्स हूँ तब गोबा बरंग विशिंगने अमसुम कारण एड्स बैगे बेमार सल चीन बरफ विशिंग कैसा अहाय गनाने बेलै कैसा किरमा सिंसा बरफ नि मुना कुटो कुसंस्कार अब तम हमको एड्स बेमार खरकसाई खरकसा हेन्डसेक रेलैखे बैक थंगसा कालैखे ग्लास कैसे तीन लाइके सलो हमें अब हया अ बेमार अब जत्न मुना कुटो हाई के बाद कुसंस्कार कहम के सीना जे अब भाईके अ बेमार सलो अ बेमार सलमानी बनी कायबरी सलो बाहिके अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हेके बा असुरक्षित जन सम्पर्क अब तीखेब अ बेमार सलेब हेके बा।

0: मानि बिसिंते अब्यामार सलो थै संख्या बा जदि ब्यामारनखा एक्सीडेंट खालेकनखा हस्पताल थै नाना नांगो सिं सरो थै दाना नांगो आफ्रु जदि केबनारनि आनि सरो थै नानि दंखानखे थै नाना नांखे केबनारनि नारन फन थैना निन थै जदि एसआईबी पॉजिटिव माने एच ब्यामार गनांखे आनबो सलो पाइ मानो आते कैसे कैके सीरीज ते सीरीज है के बा सूची बिचिंग ते कैसे बरोक नो जे सीरीज बाय इंजेक्शन रोजा रोजा के बाय कोलोम खान के रुवा बेबुं बेमारन खान के आबो बाय नो ते खर्चन नो बोर खान खान के कुमुंग जब आ बरोक जब बो ऐसे बी पॉजिटिव हैं खान के आ बरोक नो बो शोलाई मानो अबुन बागिने अब है के शोलाई मानो अपन करे तेज हमरे सलाइमान बाहिके सलाम करके बुमा बुमा ने ऑपी बशा सलाइमानो बुमा जफरो साजिरी अंगो प्रेक्षण अंगो बुमा जो भी ऐसे भी पॉजिटिव हुआ अंगांके बोन बशा बो अध्यमा सलाइमानो दो चार फिर बो सलाइमानो अपन बगैर ना डॉक्टर नाजंगा नंगो जफरो बुमारो कामयाम सैनि बा जे कोनो जागानि बरफा नंथों जेफ्रो सादिरि आङो आफ्रो बर डाक्टर ना जेखै बरनो टेस्ट खालायरो एसआईबी टेस्ट खालायरो अ बेमार दातों ने बेमार तंगा के बनो बिथिसार होइने हामलो बेमार बाय कलब जा बर पारा रगो तंगांके कबांगमा जागाबो बरनो बहिष्कार खालाय जों माने बोनो नाकिनि खालाय जायगा सांगनां जायखे दङ पिया आबो बेलाय जाया खालायो ब एसआईबी पॉजिटिभ फनों तो बबो नों आं हाय न थांनि मानो बबो नों आं हाय केन परा लेखा खालाय मानो बनि बो थांनि दंनानि अधिकार दङ बनो आबो हाय अबहेला खालाय मानो सांगनां या मानि आबो बेलाय जाया त्रिपुरा सरकार ताई त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ओ जागाबो बेलेखन साक्तरी सामू खालाय दङ त्रिपुरा सरकार ताय त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी साक्तरी सामू कामा बाय ताबो हास्तिनि जत साब डिविशन हायकाबा डिस्ट्रिक्ट ओ लेभेल ओ जत हस्पताल न ताबो जे निनि एएसआईबी टेस्ट खालायनानि सेफ दङ आबोरां बिसिं बुरो बुरो त चिनि जे जे हस्पताल दङ एजेमसि ताय जिबि हस्पताल आइजेएम हस्पताल विशालगढ़ साब डिविशनल हस्पताल मेलागढ़ गुमती अमरपुर शांति बाजार बिलुनिया साबरम खोआई टेलेमुरा कोलाई बीएसएम मनुघाट गंदासरा अनुकुटी धर्मनगर कांचीपुर ओ जे ओ थाय रगो जे जे जागाव हस्पताल थंगो आरो नन टेस्ट खालाय मानु निन छागो एसआईबी पॉजिटिव दातों तंग करै मान जने बनगुरी नाता खालाय दि ताना छले दि बेमानो सना छले दि जे बेमार मान जने नो ताना छले दि अबनावनि दायित्व तबो नरम बिसिनिने तुमों सुमों तो कांगां के नरक सुमी मानो
1: अकोक न मुझे नरक दी एच है बिश
0: या बोलो ना मिनी सागो अथियो एच आई बी पॉजिटिव दा ना कि तो दा तोम करे अब सही मने अब वो हस्पताल खड़े कर के मिनी तुमों जो दी पॉजिटिव नहीं तो हाँ के अब नो नूरु सुमी छाने बरोक के कोबन में बरोक नो के बनो छाया हुई तो अंजागो बेले कहाँ सुनो
2: सर एच आई वी पॉजिटिव हिंके बुनी पाइथा फिनुंगा
0: जोरा का शो बिनी शोई नाई के नी हाई के बार शक नाई मुंग तोंग मनिया किया तबो जोरा सलाई जा का जोरा सलाई जा मा भाई बाक्सा बाक्सा शोई सी मुंग निबो कताल कताल तांग सेब आसा क्या तबो एआरटी थेरापी ताय बिथिनि बिसिंते मिथि सालबुंगस सामुनि बिसिंते

0: कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
2: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में

थांगिया सचि पकरा जेके सिन्हा तीनी छाका लोकरोगने कक्थुम नायम थांगना बागै हास्थाय हापां कतालको टांगसेप सामुंगो फनांगै तंगो हायुं कापनि नकआउटनि गायथाम थुंमुंगो अंखरन गायथाम हाकतर फ्रांस मोरकुटाय नरुये ताबु कक्टमा सुक्रुबै केन्द्रनि बुरिते चराय हामक्राय मन्त्री अन्नपूर्णा देवी साका 2047 बिसियो विकसित भारत सनामना नारै त्रिपुराव बबायथां चुकजग बदलनि बुरिरक नांकुकमानि पजातै सामुं टाङै तंगो तिनि सालतां त्रिपुरा हांकर दुक्लि ब्लकनि कन्फारेन्स हल बायथां चुकजग बदलकनि आदंनबै ककलाम सालायमाव ब ककनो साका केन्द्रनि मन्त्री साका हाकतर गोनाङै खरक चिरजाकनि गोबां बुरिरक बायथां चुकजग बदलबाय गोदाल जाक हास्ते त्रिपुराव काय बाजि बुरि साय बायथां चुकजग बदल तंगो खरक बारा साय बुरिचिबा साय बुरिरक अ बायथां चुकजग बदलबाय गोदाल जाक तंगो हाकतर गोनाङै बेबागै खरक थाम रुजाक लाखपति दिरि तंगो आबुनि बिसिं त्रिपुराव लाखपति तंगो खरक सारा साय थामचि साय केन्द्रनि बुरिताय चराय हामक्राय मन्त्री अन्नपूर्णा देवी उमर कासुग्या कायमा मुथाकनाव बाय

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है।

0: वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर

0: की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं

0: बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब

हवा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।